मेरे ब्रेक तो ब्रेकिंग न्यूज है, तेरे प्रिटी फेस पे फंस गया, गलती हुई मैं तुझे देख के हंस गया, मेरे सिचुएशन पे ना लाफ करो, मुझसे दूर रहो, मुझे माफ करो।

छोड़ मुझे दिल मेरा पत्थर का ब्रेक नहीं कर सकती गाने हेटरों के मुंह पे जाके बजे बूम क्लियर है विजन मेरी यारों ने नो ज़ूम ऋतिक नहीं फिर भी मचेगी धूम दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम

0: मिस नहीं करता, पता है पहाड़ के हाथ में भी दे देगा तभी तो बादशाह को कोई टेस्ट नहीं करता। I'm a hustler, A1, lifestyle, A1. ऐ मुझे न सिखाओ घंटे पे फेम, क्योंकि बस एम जो जलते हैं उन्हें और जलाओ। हिटरो की छातियों पे रख दीवे बाल के टोर मरावा के तिछोरे करनाल के डैश अपनी दिल्ली से तेरा दून दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।
1: अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में,

piar, la sarabia que borró en el aquí, man six and tulla no trajo en el aquí, peleganda aquí, afira cotitor en el aquí, a carat me hilavo se hone el aquí, me ne bola ek chote se fight, super teak che, baja meri chundigar ke flight, schedule thoda tight, kati aditya, jhoot bolne ki bhi ek height, kaise bataun life chuto se bani, peer se hai rakke jo goto se bani, meri na kisi insaan se bani bani, to bas kabristan na ke bhooto se bani, main kabhi bahut zyada sad, kabhi bahut hi funny, mere goyat ke back कानों में टिफनी मेरे और जीत के बीच कोई बट टिफनी चुतियों की टिप्पणी पे न करो टिप्पणी तेरे जैसे खास से मैं आंट चाटता है तू मैं ऊपर वाले से डिमांड मांगता फिर कभी सेक्स तो कभी ज्ञान बांटता फिर जो भी चलता है उसकी गांठ फाड़ता फिरूं हिट पे हिट मैं मारता फिरूं तीन रात लगातार मैं जागता फिरूं भोलेनाथ के साथ मेरी बनती है सही उसे नचाने का शौक है मैं नाचता फिरूं।

हमें डूबने का शौक था, उसे बचाना आता था। हमें मचने का शौक था, उसे मचाना आता था। जोड़ी क्या ही खतरनाक थी हमारी, क्या हमें नाचने का शौक था, उसे नचाना आता था।

Nelumbu FM 89.6 MHz. हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।